0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like किशोर but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: तू है बुलबुल
1: सच है बिल्कुल यू आर वंडरफुल
0: लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज